एक्स का एफ एम कौआ ओलंग एम तेन कुछ आउंगा प्रोग्राम गुस्सा उसे से का के रदो अगुसे दे कौआ तीन कौआ अखें देर तक मनी थे दे कुंकन गुस्सा पा के येन एन ट्वीन तक मनी थे मुंग टांग ओलंग एम तेन होजी तबा अंकुए सा उसे से का के आ ओलंग कौंगा अगुसे दे कनुसे कवे तो कई सी पंगा एम तेन कुछ आउंगा ओलंग जिचांग गुस्सा अंचिमा काया कि वो लंगा कौन गा ता मैं वो कंगा में कनु से उसी लगे का वो क्रेम के सेफ्टी मैंने को मैं वो कंगा में दिवे मुमले चुआचा वो जी का एम तन चुंग वो लंगा जी चंग उसे उसी से का के रातो कि कभी तो कई सी पंगा बकुए कई को रातो के नुमरु या वो नेतन सेवा पेन नेखा एफएम अनुम तो कुए आउंगा वो लंग उनको सा उसी से का के आ प्रोग्राम गा कौन गा अलग का प्रोग्राम तो कुंगा ngwe sa ka wisi se ka yang ko kong ka ke me ko chang ba ne kha te ji ke tan chung ba ke kwang kha ngu su pa ke 20 minute mo ngwa ngwa le ngwe ten ho ji ta ba ke mo ngwa ma su ten du ngwa ba o lang